सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: मैनेजर साहब, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: जब तक तुम्हारा 2 साल का अग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तुम्हें अपना पासपोर्ट मिलेगा और ना तुम अपने देश जा सकते हो।
0: किस बात का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में तो ये भी लिखा था मुझे हर महीने मेरी सैलरी मिलेगी, नहीं मिली 8 महीनों से, और अब चाहिए भी नहीं मेरे को। मेरे को मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: तुझे एक बार का हुआ समझ नहीं आता? जब तक तेरा 2 साल का अग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तू अपने घर जाएगा और ना अपने देश। अब निकल यहाँ से, चुपचाप काम कर अपना।
0: घर नहीं जा सकता? हे बाबा श्याम, अब तू ही धनी है।
1: तुम्हारा बाबा श्याम धनी है यहाँ से 7 समुद्र पार। यहाँ पे तुम्हारा धनी वही है जिसने तुम्हें वीजा दिया और जिसके पास तुम्हारा पासपोर्ट है।

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: हाँ जी, किवें लगे तुहानू इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नू भी जरूर सुनियो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एम पी थ्री चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

अदब बदब होशियार होशियार।

0: उसका 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे रेडियो डी
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, सत श्री अकाल दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: शिवम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जिस लड़की पे दिल आया है, रिमेक्स सॉन्ग।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सरप्राइज।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं।

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मार्टिन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मेरे महबूब तुझे सलाम।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना। हेलो,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।

0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते
0: नमस्ते मैम।
1: सर। नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान मैम।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है पापी देवता और गीत के बोल है सावनों के मौसम की नीयत खराब है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शैलेश,
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? लातूर सिटी संजय कॉलोनी।
0: कौन सा फोन करना चाहोगी?
1: ये रात और ये देरी।
0: ओके, सुना रहे हैं आपको करना है।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: नमस्कार जी।
4: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तुलपेड़ा से।
4: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: सारे बदन में जहर चढ़ गया, बिच्छू लड़ गया।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बांध मेरे पैरों में पायलिया।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

0: नाम सत्यनारायण गुप्ता।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना हड़ौकन का गाना, जिससे सामने वाली खिड़की में दाग का टुकड़ा रहता है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी, सर मिस करिएगा ना। हेलो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: पुष्कर नाथ शर्मा बोल रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना सुनूंगा आज मैं लीडर फिल्म का है अपनी आजादी को हमारी किसी मिटा सकते नहीं वो वाला गाना सुनूंगा क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है ना।
3: हाँ जी सर। ओके सर सुना रहे आपकी फरमाइश पर।
2: अभी मैं अपनी ओर से प्रणाम करना चाहूंगा मेरा अंकल जी है जम्मू से केशव शर्मा जी और आंटी जी हमारी रानी की और हमारी दीदी जी साक्षी शर्मा जी।
3: ओके सर सुना रहे आपकी फरमाइश।

0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते चौधरी, आज कर रहा हूँ।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना तो रेडियो BHT सुपर हिट लाए हैं।
0: हाँ जी सर बताइए।
1: उनका नाम है पति पत्नी और वो।
0: कौन सा सर, थोड़ा तेज बोल दो।
1: पिक्चर का नाम है पति पत्नी और वो।
0: हाँ जी सर, गाने के बोल।
1: गाने के बोल हैं छोरी साइकिल वाली।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection.
3: Hello.
4: Sir, naam kya hai aapka?
3: Lapus Meena.
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: नसिया कॉलोनी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: मासूम शर्मा का।
4: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करीबन?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: आरती मीना।
2: आरती जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं आरती जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: हम मर जाएंगे अरिजीत सिंह का।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: हाँ सर जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से।
0: सावनकर जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो के।
1: सर गाना है देखो, चांदी की साइकिल सोने की सीट,
0: बिल्कुल
1: नितिन मंगेशकर अनुराधा पौडवाल ने गाए, सो भाभी फिल्म गाए थे।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

0: जी नाम बताएं।
1: अभी आया योगेश जांगड़े भी मेरा छत्तीसगढ़।
0: योगेश जी बताएं कौन सी फिल्म से क्या तो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश के बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ
0: नाम बताएं सर।
1: आदिल खान।

0: नाम बताएं सर।
1: जी सर, मेरा नाम त्रिवेदी
0: है। जी
1: मैं हूँ त्रिवेदी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं त्रिवेदी जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चिकनी चमेली।
0: हाँ जी
1: चिकनी चमेली
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश के साथ।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: अमन मेणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अमन जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: करण औजला का बेबी गाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
0: Radio DS, जहां हर frequency पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नाम बताएं।
1: अमन मीरा।
0: अमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर चुकी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: किसी दिन तो मेरी हो गई, मैं पागल ना हो जाऊंगा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
3: रुआन खान।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: आवारा।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसे?

0: तुझसे
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
3: जी नमस्ते बहना जी, प्रणाम, नमस्कार।
4: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
3: जी मैं राजू यादव, ग्राम प्रेंका श्रीराम पुंडेरा सरीला राठ मुस्कुरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
4: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: जी सुनेंगे बहना ओ बहना, नहीं चाहिए मुझे कोई कहना।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
2: नमस्कार जी।
3: हाँ, नाम क्या है सर? नमस्ते,
2: रसूल खान नाम है साहब मेरा।
3: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
2: सेवा,
3: सेवा से?
2: हाँ, सेवा।
3: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे।
3: कौन सा सर, थोड़ा तेज बोला, आवाज नहीं आ रही।
2: तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम सब पी रहे।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम अभिषेक लोढ़ा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी मिर्जापुर लोढ़ा कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बेरान।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
3: योगेश टाटू।
2: कहाँ से बात कर रहे?
3: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: रूट।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अमित कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चार गोट।
0: कौन सा? राजा भट्ट आलिया भट्ट।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: आरती मीना।
1: आरती जी कहाँ से बात कर रहे
0: हैं?
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: लंबी लंबी।
1: बिल्कुल सुना रहा।

0: जय इस छोरे गल ना सेटिंग हो जा जी सा आ जा
1: छोरा तो घना एंडी है।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: सूर्या।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: पृथ्वी सॉन्ग मैम।
3: कौन सा?
2: पृथ्वी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

और दोस्तों वक्त हो चुका है 1:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे
1: राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच सदियों से एक ऐसा किला खड़ा है जिसे भारत का सबसे रहस्यमयी किला कहा जाता है। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक खंडहर लगता है, लेकिन इसकी हर टूटी हुई दीवार अपने भीतर एक अनसुनी कहानी छुपाए हुए है। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि हवा की हल्की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी महसूस होती है। सदियों से लोग इस किले के बारे में ऐसी कहानियां सुनाते आए हैं जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर सचमुच इस किले में कोई अनसुलझा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे उस कहानी को जिसने भानगढ़ का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। कहानी शुरू होती है उस समय से जब भानगढ़ एक वीरान किला नहीं बल्कि एक समृद्ध और जीवंत नगर हुआ करता था। चारों ओर व्यापार, संगीत और खुशहाली का माहौल था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आया करते थे। यहाँ के बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। महलों में उत्सव मनाए जाते थे और मंदिरों में सुबह शाम घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही समृद्ध नगर एक दिन पूरी तरह वीरान हो जाएगा।
2: लोक कथाओं के अनुसार इसी नगर में रहती थीं राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी।
1: उनकी बुद्धिमानी और सौम्य स्वभाव के कारण भी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उसी समय भानगढ़ के आसपास रहने वाला एक तांत्रिक भी राजकुमारी के बारे में सुन चुका था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वो राजकुमारी को पाने की इच्छा रखने लगा और यहीं से शुरू हुई एक रहस्यमयी कहानी। क्या सचमुच एक तांत्रिक की इच्छा पूरे नगर की किस्मत बदल सकती थी? इसका जवाब छिपा है कहानी के अगले अध्याय में।
3: लोक कथाओं के अनुसार उस तांत्रिक का नाम सिंघिया बताया जाता है। कहा जाता है कि वह तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण माना जाता था।
1: लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। कोई उसकी शक्तियों को चमत्कार मानता था तो कोई उन्हें अंधविश्वास। लेकिन सिंघिया के मन में एक ऐसी इच्छा जन्म ले चुकी थी जो आगे चलकर पूरे भानगढ़ की सबसे चर्चित कहानी बन गई। कहा जाता है कि वो राजकुमारी रत्नावती को किसी भी कीमत पर अपने वश में करना चाहता था।
2: लेकिन राजकुमारें अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं। उन्हें किसी भी तरह के छल का आभास जल्दी हो जाता था। एक दिन राजकुमारी की दासियां इत्र और श्रृंगार

0: का सामान खरीदने बाजार पहुंची।
1: लोक कथा कहती है कि सिंघिया भी उसी बाजार में मौजूद था और उसने एक विशेष इत्र की शीशी पर तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया। उसका विश्वास था कि यदि राजकुमारे उस इत्र का उपयोग करेंगी तो वे उसके प्रभाव में आ जाएंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि राजकुमारी ने उस इत्र को हाथ में लिया और तुरंत उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने बिना देर किए उस शीशी को पास रखे एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया।
2: लोक कथा के अनुसार उसी क्षण वह विशाल पत्थर अपने आप ढलान की ओर लुढ़कने लगा।
1: सिंघिया ने बचने की कोशिश की लेकिन पत्थर तेजी से उसकी ओर बढ़ता चला गया। लोक कथाओं के अनुसार जाते जाते उसने भानगढ़ के भविष्य को लेकर एक रहस्यमयी चेतावनी दी जिसे लोग आज भी श्राप के रूप में याद करते हैं। लोक कथा कहती है कि सिंघिया की मृत्यु के बाद भानगढ़ की खुशहाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक साधारण संयोग माना लेकिन कई लोगों ने इसे श्राप की शुरुआत समझा। धीरे धीरे पूरे नगर में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी।
3: कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है।
4: क्या तुमने उसे देखा?
1: कोई कहता, रात के समय महल के आसपास अनजानी परछाइयां दिखाई देती हैं। तो कोई दावा करता कि सुनसान गलियों में कदमों की आवाज सुनाई देती है।
5: हालांकि इन बातों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता लेकिन लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं।
1: इसी बीच भानगढ़ के आसपास राजनीतिक हालात भी बदलने लगे थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर में युद्ध और सत्ता संघर्ष ने भी इस नगर को प्रभावित किया। धीरे धीरे व्यापार कम होने लगा और लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर जाना जाना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में कभी चहल पहल से भरा भानगढ़ वीरान दिखाई देने लगा। मैनर्स की घंटियां शांत हो गईं और महलों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। आज भी इन खंडहरों को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि कभी यहां एक समृद्ध नगर बसता था। समय के साथ श्राप की कहानी और भी रहस्यमयी होती चली गई।
5: लोगों ने अपनी अपनी तरह से इस कहानी को आगे बढ़ाया और भानगढ़ रहस्य का प्रतीक बन गया।
1: कुछ और कहानी कहता है, अगले भाग में हम जानेंगे असली ऐतिहासिक तथ्यों को। अब तक आपने लोक कथा सुनी है लेकिन अब सवाल है, इतिहास क्या कहता है? इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंत में आमेर के शासक परिवार से जुड़े राजकुमार माधो सिंह द्वारा कराई गई थी। उस समय यह नगर व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। भानगढ़ की वास्तुकला आज भी राजपूत शैली की शानदार झलक दिखाती है। यहां बने मंदिर, महल और बाजार इस बात के गवाह हैं कि कभी यह नगर बेहद समृद्ध था। तिता है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी और नगर की रौनक धीरे धीरे कम होने लगी।
2: इतिहासकार मानते हैं कि लगातार युद्धों और राजनीतिक बदलावों ने इस क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया।
1: कुछ शोधों में पानी की कमी और आर्थिक गिरावट को भी नगर के उजड़ने का संभावित कारण माना गया है। यानी इतिहास नगर के पतन के पीछे प्राकृतिक और सामाजिक कारणों की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर लोक कथा इस पूरे घटनाक्रम को तांत्रिक केल के श्राप से जोड़ती है। इसी वजह से भानगढ़ आज इतिहास और लोक विश्वास दोनों का एक अनोखा संगम बन चुका है।
5: आज यहां आने वाले टक सिर्फ खंडहर देखने नहीं आते, बल्कि उन कहानियों को महसूस करने आते हैं जो सदियों से सुनाई जाती रही हैं।
1: हर टूटी हुई दीवार
6: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: बाकी जो मर्जी हुंदा हो जावे वीरे, कमेंटा च गाल नहीं कढ़नी
1: पैंदी है फिर तक चैंपियन। चंगा फिर अगली जारी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: मास्टर सपोर्ट को और दबाइए इस घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जाट अकेला यारी।
0: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश करिए गाना।
2: मार डालूंगा तन्ने में। आया

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: हिमांशु मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चांदनी।
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ अभिजीत।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे? आज तो नहीं है, कल तो।
1: चलो ठीक है, आज का गाना लिखो, बढ़िया सुपर हिट गाना लेके आए।
0: हाँ जी बताइए।
1: उंगली में अंगूठी।
0: उंगली में अंगूठी,
1: अंगूठी में नवीना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: यू वेलकम।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गाना
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सुनना
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: राजदीप।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? सिंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सब जे।
0: कौन सा?
1: सब जे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, मरते दम तक रहेगा सिर्फ आज नहीं।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: रेडियो डी एस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: रेडियो डीएस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: रेडियो DS। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त आकाश, और अभी सुन रहे थे आप भजन, और अब चलते हैं न्यू सॉन्ग सुनने।

जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो?
1: अब हम नहीं मिल सकते।
2: नहीं मिल सकते।
3: I'm so sorry, but we have to end this.
0: क्यों?
3: You know the reason.

0: मैं कुछ भी कर लूं,
1: तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती।
0: और तुम
1: कुछ भी कर लो,
0: मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

दुआ लेंगे। मुझे लगता है कि एवी बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे। मुझे छोड़ के जाने वाले जा, छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे।

डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

आज मम्मी के साथ सोचा हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करते हैं, लेकिन वर्कआउट के बाद ब्रेकफास्ट और लंच में क्या क्या बना, चलिए देखते हैं। सुबह सुबह मम्मी के साथ थोड़ी एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग, जंपिंग जैक, तितली आसन और स्केट्स, मतलब सुबह सुबह बॉडी को याद दिला दिया कि हम भी फिट है। एक्सरसाइज के बाद हमने पूजा की और सूर्य देवता को जल चढ़ाने गए, लेकिन आज बारिश की वजह से सूर्य देवता जी छुट्टी पर थे। फिर मम्मी ने फ्रूट्स कट किए और हमने भजन सुनते हुए फ्रूट्स एंजॉय किए। उसके बाद शुरू हुआ हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट का नाटक, मूंग दाल का चीला और गरम गरम चाय। रात से भिगोई हुई मूंग दाल में ऑनियन, गार्लिक, स्पिनच और स्पाइसेस डालकर पेस्ट बनाया। मम्मी ने पहले चीला बनाया और फिर मेरी बारी आई और मेरा चीला भी ठीक ठाक बन ही गया। फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट के बाद मम्मी और मैं वॉक पर गए, रास्ते में बहुत सारी बातें की और खुली हवा में सांस लेकर आए। फिर घर वापस आकर लंच के लिए आज हमने बनाया हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल दलिया। सबसे पहले मैंने सारी फ्रेश वेजिटेबल्स कट की और गार्डन के फ्रेश पालक भी तोड़कर ले आई। फिर प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स एक एक करके ऐड किया और थोड़ा स्पाइसेस डालकर अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद दलिया और पानी ऐड करके कुकर को क्लोज कर दिया। कुछ देर बाद कुकर खोला तो हमारा गरम गरम वेजिटेबल दलिया एकदम परफेक्टली रेडी था। और फिर फाइनली मम्मी के साथ बैठकर लंच एंजॉय किया। सच कहूं मम्मी के साथ सिंपल सा दिन भी इतना स्पेशल लगता है कि पता ही नहीं चलता दिन कब में पूरा निकल गया। ऐसे ही हमने आज का डे स्पेंड किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मम्मी के साथ सोचा हेल्दी लाइफ।

मोहब्बत करती है पर दोस्त बुलाती है, ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है। नजरों से चूमती है, लफ्जों से ठुकराती है, खुद भी उलझी है और मुझे भी उलझाती है।

0: को सो जा।
1: ये क्या बनाया है भैया? ये क्या बना दिया है इतना अच्छा? ओए भैया मेरा कहाँ है?
0: किचन में रखा है।
1: हाँ हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे लिए रोल रोल बना लिया है।
0: मोटी हो जाएगी तू। मम्मी आई वांसी नहीं देख रही, गई कहीं?
2: बस से पूरे दिन
3: के तेरी आंखों के बाद ये शहर कौन देखेगा? तू दरिया सी है, ये लहर कौन देखेगा? और तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है। और तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा? के तेरी

0: आज दिन में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ
1: अपनी बहन की आत्मा को रुलाने चल देता हूँ।
0: मगर ये क्या, ये बिस्किट खा रही है वो भी मुझे बिना बताए।
2: और फिर आते हैं ठीक ठाक बंदा और पुनिया, और बहनों का आशीर्वाद इज लाइक अमृत। तेज बुद्धि भी आता जो मुंह में भर के बैठा दवाई छालोगी, और फिर ये बेमतलब पुनिया से जिद करने लग जाती है किसकी, मगर पैसे देने के नाम पर मौत आती है। मगर ठेस वो रहम खाकर पूरे 10 रुपए देता है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पानी पूरी कैंसिल हो जाती है। कोई नहीं, ठंडे ठंडे तरबूज से तरोताजा हो जाते हैं। कभी कभी मैं लेट नहाता हूँ, नहा धोकर मम्मी के हाथ के बने आलू के पराठे खाने बैठता हूँ कि ठेस बुद्धि का फोन आता है जो कहता है आज हमारे घर दावत है। अब मैं देसी घी में सने हुए आलू के पराठों को तो नहीं त्याग सकता, वैसे भी उसके घर रात में दावत होगी, तो मैं तब तक ठीक ठाक बंदे के घर जाने का निर्णय लेता हूँ। ये है पागल, सॉरी पायल। ठीक ठाक बंदा अपने क्लासमेट के यहाँ शादी में चला जाता है, तो बस मैं और पुनिया पहुंचते हैं ठेस बुद्धि के पास, जहाँ ये प्यार से हमको भरपूर दावत खिलाता है और खाना खिलाकर प्यार से ही अलविदा कर देता है।
3: पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त।

0: ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।
1: हाँ?

0: ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।
1: अमेरिका क्या कहता था?
0: ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।

0: तो रुको
1: वीर तेज
2: बंदा जाना फौरन पे।

0: करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।
1: भगवान।

0: कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई
1: बहुत नीचा आदमी।

0: ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।
1: इसका कारण नरेंद्र मोदी है।
2: पुलिस आ गया, पुलिस आ
3: गया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
0: भगवान।

वो अलग ही लेवल का बंदा था।

0: नदुआए होगा दूध।
1: अरे बात तो खे दो अकमन सुकाई
0: जी, मैं जाऊँ है ना काई डोली जग ले और चाय बा दूध मांगर ले रहा हूँ गांव में, काई करूँ अगर वो चाय न मिली ना तो काम भी ना करेगी।
1: लिया तो फिर कोई गाल देते नहीं नुखेंगे, तेरा ही दूध हो तो तू यार आख मांग थी डोले।
0: तब काई करूँ तो चाय बा दूध ले रहा हूँ। अरे दूध तो मैं लिया ही।
2: लिया ही क्या,
0: जब तो वह जेठ जी और बुला रहे बाहर चले कोई काम है।
2: अरे तो तुम, मैं चाय पिया हूँ जब बाबा लग रही हूँ।
0: ना ना एक बार मां चल बाहर, जरूरी काम है, चाय पीछे पीजियो।
2: अरे अब किसी को काम आ गई सो जरूरी, जब मैं कुछ चाय भी ना पी बादी।
3: तो यह कैप्सूल है।

0: डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ।
1: आपको स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते जब आप गुस्से में आकर मम्मी के फोन को फोड़ दो। आजकल मम्मी अपने पुराने फोन से बड़ा परेशान रहती हैं क्योंकि अब ये फोन मक्खन की तरह नहीं चलता। और मम्मी से भी ज्यादा परेशान रहती है मेरी छोटी बहन पलक, क्योंकि जिस ऐप को ये खुलती है उसकी जगह कोई और ही ऐप खुल जाता है। अरे तू अब इतनी भी गुस्सा मत हो कि ये 7 साल पुराना फोन अपने प्राण त्याग दे। और मेरी इस फोन से बहुत गहरी यादें हैं क्योंकि मैंने पूरा लॉकडाउन इसी फोन पर पबजी खेलकर गुजारा है। पर अब समय है इस फोन को अलविदा कहने का, तो क्यों ना आज अपने घर वालों को सरप्राइज दिया जाए एक नया फोन गिफ्ट करके। तो दुकान से मैं अच्छे से फोन खरीद कर सरप्राइज देने में सीधा घर आ जाता हूँ और मैं मम्मी जी के साथ साथ पापा जी के लिए भी नया फोन ले आता हूँ। जैसे ही मैं मम्मी पापा जी को इनके नए फोन देता हूँ, इनका चेहरा बता देता है कि इनको ये सरप्राइज कैसा लगा है। फिर जल्दी से दोनों अपने अपने फोनों को अनबॉक्स कर देते हैं। पापा जी कहते हैं फोन तो अच्छा है, अब जल्दी से इस फोन को स्टार्ट करते हैं। फोन तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, पर आप दोनों मुझे ये बताओ नए फोन की पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी के नाम पर इतना सन्नाटा क्यों हो गया? और आप लोग मुझे कमेंट में बता के जाना कि आपने कभी अपनी मम्मी का फोन फोड़ा है। और हाँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना आपको।
2: प्यार हो गया।

0: हमने बहुत वीडियो देखी हैं कि लोग जल तो ला रहे हैं लेकिन वो अपनी कावर छोड़ के आ रहे हैं या बाइक ऊपर रख के ले आ रहे हैं या फिर उनकी हिम्मत टूटी तो दूसरे कावड़ियों पे सदवा रहे हैं। लेकिन मैं भोलेनाथ की सच्ची भक्त हूँ, मैंने सोच लिया था चाहे मेरी जान निकल जाए मैं अपनी कावड़ अपने यहाँ तक पहुँचा के रहूँगी। मेरे भाई ने बोला कि अगर थक जाए तो किसी और को लगा लेना। मैंने ये मतलब हम दोनों की थोड़ी बहस भी हुई लेकिन हमने किसी और को कावर नहीं दी, हम खुद ही अपने कंधों पर ला रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम भी आई लेकिन भोलेनाथ ने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई वहाँ वहाँ शक्ति दी और फिर हम फिर से चल उठे।
1: तो कब तक आप रामपुर पहुँच जाएंगे?
0: हम वैसे तो जल 11 तारीख का है, हम पहुंचने को तो आज भी पहुंच सकते हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज हम अपने जेवर में रुकते हैं क्योंकि ज़्यादातर मैं जेवर के नाम से ही कावड़ उठाई है, मैंने जेवर की बोली के नाम से, तो आज जेवर में रुकेंगे और कल फिर हम अपने गांव को प्रस्थान करेंगे फिर जल उठ चढ़ा देंगे रात को। हमने बहुत वीडियो देखी है कि लोग जल तो ला रहे हैं लेकिन वो अपनी कावड़ छोड़ के आ रहे हैं या बाइक ऊपर रख के ले आ रहे हैं या फिर उनकी हिम्मत टूटी तो दूसरे कावड़ियों पर सदवा रहे हैं। लेकिन मैं भोलेनाथ की सच्ची भक्त हूँ, मैंने सोच
2: जैसे ही आप इस सांप को टच करोगे ये आपको काटने के बजाय खुद ही मरने का नाटक करेगा। दरअसल ये सांप बहुत बड़ा नाटकबाज होता है क्योंकि इसके अंदर जो जहर पाया जाता है उससे किसी की मौत नहीं हो सकती और इसीलिए अपने दुश्मन पर हमला करने के बजाय ये सांप मरने का नाटक करता है। इस सांप को हॉगनोज्ड स्नेक के नाम से जाना जाता है, जिसे अगर आप टच कर दोगे तो ये उल्टा होकर झटपटाने लगेगा मानो जैसे कि ये मरने वाला हो। जैसे ही आप इस सांप
3: रामायण से राम मिले
4: तो बहुत ही दुख की बात है कि ये अभी भी मेरे पास से नहीं जा रही है।
5: अचंभे की बात यह कि इतनी रात को ग्लूकोन डी कौन बनाता है, वो भी इतने गुस्से में।
6: डार्क है जी, कम डार्क कैसे छू?
3: I don't know.
6: बुद्धि होनी चाहिए, मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ। इसमें मैंने 3 चम्मच डाले, इसमें मैंने 2 चम्मच डाले हैं। 2 चम्मच वाला तुम्हें मिलेगा, 3 चम्मच वाला मुझे मिलेगा, तो मेरे अंदर रिएक्शन अच्छी होगी।
4: तो देखिए ऐसा ज्ञान बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, तो कृपया करके ऐसे नमूनों से हम सभी को दूर रहना चाहिए।
6: ये मेरा है, मेरा पेप्सी मिल गई, पेप्सी। हर ग्लास में 2 चम्मच थी, 3 चम्मच हो गई।
4: तो बहुत ही दुख की बात है कि

0: वीडियो बनाने के लिए इतनी सारी सब्जियाँ मंगवाती है, देख आधी तो सड़ गई है।
1: रख दो, मैं कुछ बना लूंगी।
2: हाँ वो तो आपकी लाडली है ना, मैं 100 रुपए मांगूँ तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं।
1: आओ तो। हाँ तो लाडली क्या था, कुछ खा भी मत लेना।
2: मैं का लाडली क्या बना रही है,
1: भाग जाए यहाँ से।
0: वीडियो बनाने के लिए इतनी सारी
3: दीदी, तो अभी तैयार भी नहीं, लेकिन आप बहुत जल्दी तैयार नहीं हो गई।
1: मैं बहुत जल्दी की तैयार हुई हूँ, मैं तुमको
3: माय गॉड,
1: मैंने तुमको 5 बजे बोला था ना।
3: दोस्तों दीदी ने बोला था कि मुझे 5 बजे उठा देना, अब ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए या दीदी की जिम्मेदारी होनी चाहिए?
1: मैंने तुमसे बोला था कि 5 बजे तुम्हें यहाँ तैयार होकर आना है।
4: कर
1: मैं तैयार होती या नहीं होती, मैं तो दीदी हूँ, मैं तो पापा हूँ। बड़ी दीदी हूँ और दीदी की रेस्पॉन्सिबिलिटी।
5: सॉरी लड़कियाँ, पर एक बात सच बोलूंगा मैं तुम्हारे को, जो समझने वाले रहेंगे वो समझ जाएंगे। अगर तुम शादी के पहले जो शादी के बाद वाला हक होता है अपने मर्द को देने का, या खुद का हक जो होता है, वो अगर तुमने शादी से पहले दे दिए ना उसको, तो तुम्हारे से कभी वो मर्द शादी नहीं करेगा, क्योंकि हक अक्सर शादी के बाद दिया जाता है, ना कि शादी से पहले। जो चीज मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, समझ लेना। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो ना समझो। आप मेरा सफर स्लो है पर असली है। सॉरी लड़कियां, पर एक बात सच बोलूंगा मैं तुम्हारे को।
6: प्रेम किसके जैसा करना चाहिए, श्री कृष्ण के जैसा या महादेव के जैसा?
7: महादेव के जैसा।
6: ऐसा क्यों?
7: क्योंकि श्री कृष्ण ने सिखाया है, अगर राधा ना मिले तो रुक्मिणी को अपना लो, और महादेव ने सिखाया अगर पार्वती ना मिले तो पूरे ब्रह्मांड को त्याग दो।
5: सॉरी लड़कियां, पर एक बात सच बोलो।
8: शादीशुदा होने के बाद अगर किसी और से मोहब्बत हो जाए तो क्या वो मोहब्बत गलत है?
9: मोहब्बत गलत नहीं होती है, मोहब्बत करने वाले लोग सही और गलत होते हैं। और रही बात शादीशुदा होने के बाद की मोहब्बत, तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जिसका पार्टनर के साथ सब चीज सही होता है, फिर भी किसी और से मोहब्बत करते हैं, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि गलत है। लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जिसका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते, उसे वो नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है। सिर्फ जिस्म की चाहत पूरी कर देना मोहब्बत नहीं होता, या फिर शादीशुदा होने का मतलब जिंदगी का रुक जाना नहीं होता।
8: एक लड़के का अपना घर कौन सा होता है, उसका मायका?
10: अपने संत जैसे बड़े भाई पर जुल्म करोगे आज तुम लोग?
11: आपको 2019 के टिकटॉकर जैसा गेटअप,
10: अरे लग गई स्टोरी पे।
12: तो भैया अब तुम्हारे हाथ में फूल आ चुका है।
10: आई एम सो सॉरी, ये मेरे को डेयर दिया था।
12: चलो यार डायल करो नंबर।
1: तुम मतलब ये कहोगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा ये डेयर?
13: सो जा बेटा सो जा, कल सुबह से जिंदगी बदलने वाली है।
10: तैयार हो सभी लोग? तो दोस्तों अभी हम सभी लोग आ चुके हैं अपनी तैयारी करकर सुबह सुबह भैया को जगाने के लिए। पहले लाइट जला दी, लाइट चला।
14: रुमाल ला के दे राखी, रुमाल ला के दे।
15: ये तो मेरे पैर में ही आएगा।
14: आ जाएगा। भाई आ जाएगा भाई, अमित भाई।
16: अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रील बनाओ। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां।
1: पता नहीं भैया कैसे लग रहे होंगे, वैसे तो छपरी लग रहे होंगे एक नंबर के।
10: 3, 2, 1 आ जाओ आ जाओ।
1: Oh!
4: पैंट ऊपर करो, और इन्हें नीचे करो, इन्हें नीचे करो।
1: बॉस बन के आ गए हो तुम। अब
17: आज मेरी पब्लिक शेविंग करी जा रही है। ऐसा लग रहा दोस्तों जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो और मेरी पब्लिक शेविंग करी जा रही है। अरे तो मारोगे क्या मेरे को? खींच।
4: अब आपको एक रील बनाना, अब आपको अपनी स्टोरी बनानी है। पता कैसे? बिल्कुल ऐसी स्टोरी बनानी है, बिल्कुल ऐसी, इसके जैसे एक्सप्रेशन देने आपको इसी गाने पे। चलो चलो चलो चलो, फोन निकालो अपना, गाना चलाओ भाई, लाओ गाना चलाने दो।
17: तेरी प्यारी प्यारी दो
4: नहीं, गाना चला दो।
17: ऐसे
4: पहले देख लो इसको कैसे कर रहा है। अरे हाँ ये तो अपने मुनो भाई रहे
1: हैं,
4: पीछे हो जाओ। हाँ
1: सभी लोग
17: मेरे साथ रहे।
4: चलो चलो।
17: तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़े पावे मुझे सारी अखियां, मेरा कहना कहना हजा आ मेरे नहीं हो।
4: ऐसे नहीं करनी, ढंग से करो, ढंग से करो।
17: लिरिक्स नहीं आती।
4: ओए वीडियो दिखा इनको, वीडियो दिखा।
1: ऐसे करनी है, ये वाला करो। ये वाला देखा, ये वाला, ये वाला।
4: चलो गाना चलाओ, गाना चलाओ, चलो या, चलो चलो।
17: तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़ पावे मुझे सारी रखियां।
4: मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, दोबारा करो, दोबारा करो, मजा नहीं आ रहा,
17: मजा नहीं आ रहा,
4: मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा,
17: मेरे पास ही नहीं है डांस।
4: मजा चलो चलो चलो चलो।
17: तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़ पावे सारी रखे अखियां,
4: दोबारा करो।
17: ठीक है, देखिए दोस्तों ये मेरी सराफत का फायदा उठा रहे हैं। मेरे को डांस नहीं आता, मैं कैसे डांस कर लूं?
4: हमारे हमारे सराफत फिर गिर भी रख जाती है उस दिन, जिस दिन हमारे साथ ऐसे होते हैं। कुछ नहीं है, करो करो करो।
17: तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो।
4: कुछ बदतमीजी नहीं कर रहे, करता तुम ही रहे डांस, हम थोड़ी कर रहे हैं।
17: इज्जत का ढंग से फालूदा बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। हेलो यहां से
4: ओए सिंपल सा डांस, एक लास्ट बार करो, चलो डांस चलो।
17: तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़ पार मुझे नानी रखियां, तेरा अ अ बिना तेरे जीना नहीं मरदा। अब हो गया, अब नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा दोस्तों, अब हो चुका है।
4: हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
17: मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। गर्मी लग रही है ना,
4: स्टोरी तो लगाओ, स्टोरी स्टोरी स्टोरी तो लगाओ। ये तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगनी चाहिए, दोस्तों स्टोरी लग रही है भैया।
17: ऐसे नहीं होगा
4: दोस्तों, ये ज्यादा खतर बनने हैं, इसको हम लगाएंगे स्टोरी पे। अरे लग गई स्टोरी पे, मजा आ गया, मजा आ गया। लो भैया मैं तो मेंशन में कर रहा हूँ तुरंत,
1: मैं भी कर रही हूँ, मेरा भैया फेमस होने की कोशिश करता हुआ।
18: मुझे जलील करके अब तो कल आराम से सब हल्के हो जाओगे ना।
4: आज ही हो गए हम तो।
18: अब क्या है अगला डेयर
4: आपका? अगला डेयर
18: की मौत क्या है?
4: अगली मौत आपकी ये है, जैसा कि भैया ने पिछली बार किसी सुंदर लड़की को बोला था ना गुलाब देने के लिए, तो अब आपको किसी रैंडम लड़की को देना है।
1: पहले तो तुमने मुझे दे के फास्ट काट दी थी, सुंदर लड़की,
4: पर अब की बार आपको किसी रैंडम लड़की को देना है, इसको नहीं देना है, और उससे ये बोलना है फूल देते हैं। अरे ये देखो, उठो जल्दी।
19: हेलो, क्या एलियन आ गए क्या? सुपर हीरो दारू मरवत को नहीं आना होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो देर करना है।
20: तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं भैया को लेकर देर करवाने के लिए, तो भैया जी पकड़ लो इनको, सब पकड़ लो।
19: मैं क्या भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग जाऊंगा, नहीं मैं क्या गायब हो जाऊंगा, मिस्टर इंडिया हूँ मैं, देखो घड़ी है, गायब होकर जाऊँ।
1: ज्यादा नहीं बोलना, हमारे अंदर में हो तुम।
19: राखी को कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ मैं कुछ कहूंगा। हट गवार,
17: मेरे को उतारो, मेरे को बदबू आ रही है इस गाड़ी में,
1: सीधा करो सीधा,
17: मेरे को पायलर राखी।
20: साइलेंट अटैक हो गया, साइलेंट अटैक हो गया,
17: अनामत आ रही है।
1: कितना कितना
17: झूठ आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा इस गाड़ी में, मैं इसके साथ
2: ही बैठूंगा, मैं पायल के साथ ही बैठूंगा, मैं राखी के साथ ही बैठूंगा।
19: तो अभी हम दोस्तों आ चुके हैं बाजार भैया को लेकर, तो चलिए भैया आपके डेयर के
2: दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे पीटीएम में आ गया हूँ, पेट में झूला सा झूल रहा है कुछ।
19: घर पे क्या कह रहे थे?
2: मैं तो कर लूंगा।
19: भैया को फूल ना दे दूं। भैया लड़की थोड़ी है भाई,
2: भैया आप लड़की हो?
19: भैया ये मेरे को एक डेयर दे रहा है खतरनाक वाला कि मेरे को किसी एक रैंडम लड़की को फूल देना है।
2: आपको एक मौका मिले, आपको एक लड़की से ये कहना है फूल दे के आज तो घर से बाहर आ गई है, अगली बार से मत आना क्योंकि बहुत तेज काली पड़ जाओगी। कैसा कैसा डेयर है ये? आप भी क्या बात है
19: भैया, तो कह देते भैया, आप तो भैया का आशीर्वाद लेना पड़ेगा क्या? अरे भैया आप बहुत मस्त लग रहे हो, फूल बेचने वाले हमेशा फूल जैसे दिखते हैं। तो भैया अब तुम्हारे हाथ में फूल आ चुका है, चलिए अपना डेयर पूरा करिए।
2: जा चुका है
19: बेशक, जिम में जा चुका है, डेयर तो पूरा करो। ये बीच का, ये तो बीच का बिच्चू है, आगे बढ़ो।
21: अरे वाह, तीन तीन लड़कियां,
2: पर ये काली नहीं पड़ेगी ना,
21: असली असली लड़की चाहिए, असली फूल देना था दोस्तों। ये तो झुमके लेने आ चुके हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं।
22: हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसको जानते हो, मेरे को जानते हो, एक हेल्प करोगे? ये ले लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ कि आज तो आप धूप में बाहर आ गए हो, अगली बार से मत आना क्योंकि आपकी क्यूटनेस गायब हो सकती है। आई एम सॉरी, एक्चुअली ये मेरे को डेयर दिया था उन्होंने, मेरा डेयर कंप्लीट हो गया, इसे आप रख लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल,
21: आज जवाहरलाल नेहरू बन गए भैया हमारे,
22: सबको गुलाब बांट रहा हूँ।
21: तो दोस्तों मेरी खुशी पेट से यहाँ तक पहुंच चुकी है क्योंकि मेरा डेयर कंप्लीट हो चुका है बहुत ही आसान तरीके से, बिना चप्पल खाए, बिना सैंडल खाए, बिना जूते खाए। मेरी बात सुनो, अभी दोस्तों मेरी खुशी यहाँ से फिर दोबारा नीचे जाने वाली है क्योंकि तीसरा जो डेयर है उसे सुनकर आपकी रूह क्या आने वाले 7 जन्मों की रूह कांप जाएगी।
2: ये आप देखते चलो क्या होने वाला
21: है। आपका तीसरा डेयर है
22: दोस्तों, मैं बहना हो चुका हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
21: बात सुनो, डेयर तो सुन ही सकते हो। आपका तीसरा डेयर ये है कि आपको कुछ लड़कियों के बीच में जाना है।
22: मैं नहीं जा रहा,
21: मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। उसके सामने उनसे बोलना है जो आंटी होगी वो सबसे पहले लेगी।
22: चप्पल गिराने वाले डेयर है
21: भाई, ये करना पड़ेगा भाई।
22: ना ना ना, मैं कैसे पीछे चला
23: जाऊं? और हम दूर हो जाएंगे।
21: और क्या, हम दूर हो जाएंगे, जब मार पड़ रही होगी तो हम आ जाएंगे।
22: तुम लेके जाओगे, मुझे नहीं पता, तुम लेके जाओगे। ये लो पकड़ फोन, मैं नहीं पकड़ पकड़ पकड़।
21: तो जाओ, चलो भागो।
22: कहाँ जाऊँ मैं?
21: ढूंढो,
22: तुम मेरे को छोड़ के आओ, मुझे कहाँ जाना है?
21: हम क्या छोड़ के भाई, ये तो ढूंढना है ना तुम्हें, मुझे रैंडम रैंडम।
22: प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं इंट्रोवर्ट का देवता हूँ, मुझसे ऐसे काम नहीं होते।
21: फेरता रहूं दर बदर।
23: मैं वहां से मक्के आई हूँ।
22: अच्छा,
23: अरे अश्विनी नाम तो परी है। अच्छा, अरे
22: अच्छा, अंशु परी दोस्तों, मल्टीवर्स मल्टीवर्स
21: दोस्तों, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं दिख रही, लगता है इस जगह के हिसाब से मैंने डेयर गलत दे दिया भैया को। तो अब समय है भैया का,
22: एक लड़की तो बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसको ग्रुप चाहिए, वो भी बैठा हुआ जिनके बीच में बैठूं जाके।
21: अरे बात तो सुनो, अब तुम्हारा डेयर हम चेंज कर देते हैं ना, आपको किसी दुकान में जाना है और वहाँ से कोई एक चीज चोरी करके लेकर आए।
22: चले, ये नहीं, ये चोरी है, मैं नहीं कर रहा, ग्रुप वाला कर लेता हूँ मैं।
21: हाँ तो ग्रुप वाला कर लो,
22: ठीक है। हेलो, हाँ मैं ग्रुप वाला कर लूंगा।
23: हेलो,
22: हेलो
23: दीदी। हेलो भैया, आप पुनिया भैया।
22: सुनो सुनो, आप कौन सी क्लास में हो?
23: हम लोग 10।
22: ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जो आंटी होगा वो हिलेगा नहीं।
21: हिल गया,
22: हिल गए दोनों, हिल गए। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, ये मेरे को डेयर दिया था, मैंने अपना डेयर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मेरा डेयर कंप्लीट हो गया। आप कुछ मत कहियो, ये आंटी भी है, ये सबसे पहले यही ली थी। मजा आ गया, मजा
21: आप इनमें मार दो,
22: लाओ 10 रुपए। आज दोस्तों मेरी किस्मत थोड़ी तेज काम कर रही है, डेयर मेरे पास खुद चल के आ रहे हैं, आइसक्रीम वाले भैया के पास आ गए। आ जाओ जल्दी आ जाओ, बताओ कौन सा फ्लेवर की आइसक्रीम खाओगे,
23: जो आपको बेस्ट लगे।
22: इधर से चूज कर लीजिए, देखो इतने सारे नाम है, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी और
23: ब्लूबेरी
22: बबल गम,
23: मैंने एक खाई थी बबल गम।
22: ये लीजिए आपकी ब्लूबेरी।
23: नहीं, 3 ब्लूबेरी
22: है। ओके फिर बाय, थैंक यू सो मच मेरा डेयर कंप्लीट कराने के लिए, बाय
23: बाय भैया,
22: बाय
23: बाय।
21: तो भैया अभी मेरे 3 डेयर हो चुके हैं, अब सबसे पहले डेयर कौन करवाएगा?
2: अनामिका के डर तो क्या फुस्सू होगा, फुस्सू
23: क्या फुस्सू होगा,
2: ऐसे
23: साइलेंट अटैक, तुम्हें कोई भी रैंडम कॉल लगानी है और उससे रेसिपी पूछनी है। ये पूछना है कि मुझे करेले की सब्जी कैसे बनानी
0: मुझे आती है बनाना। रैंडम मतलब अपने नोन पर
3: नहीं, रैंडम नंबर, रैंडम नंबर आपको डायल करना है ऐसे 10 नंबर, उसके बाद फोन करना है उससे, कोई भी फोन उठाएगा उससे पूछना है भैया मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करेले की सब्जी बनाना सिखा दो।
0: ठीक है,
23: आंटी हो या चाहे अंकल हो या लड़की हो,
0: ठीक है कर लो।
3: चलो भैया डायल करो नंबर
0: 1234567910। ये तो अवेलेबल
23: नहीं है।
0: 1234567810
3: भाई किसी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
23: 867 से क्यों शुरू कर रहे हो?
6: नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली
23: स्विच्ड ऑफ। स्विच
3: ऑफ। 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ।
23: कितने हैं?
3: 10 हैं। अगर अब भैया हम करेंगे डायल।
23: ओ जा रही है।
3: गई गई गई।
0: आजकल कोई अननोन नंबर नहीं उठाता।
23: उठा लेता भैया मेरे पार्सल की वजह से। अरे
3: भाई उठा लो भैया।
23: डालो
3: सात से नंबर शुरू कर दिया। हेलो हेलो कोई और ही लैंग्वेज में बात करी उन्होंने। आई जी ओजी आ जाओ आ जाओ। ठीक है हेलो हेलो
7: हेलो के
23: ये
3: लड़कियां पर नंबर जा रहा है मेरे को डर लग रहा है वैसे वो केस कर देती है भाई। भाई ऐसे ठीक नहीं रहता ये अनसेफ वाली चीजें होती है। लड़कियों पर जाएगा तो बात नहीं करूंगा लड़कों पर जाएगा तो बात करूंगा। हेलो हेलो क्या आप मेरे को एक रेसिपी बता सकते हैं? वो आज मेरे को किसी पुलिस वाले जैसी लग रही थी।
24: भैया डर क्यों रहे हो यार इतना क्यों डर रहे हो?
3: ये फोन उठा लो यार। हेलो
7: हेलो
3: हेलो हाँ जी भैया मैं पूछ रहा हूँ क्या आप मेरे को एक रेसिपी बता सकते हो?
7: क्या
3: क्या आप मेरे को एक रेसिपी बता सकते हो?
7: क्या चीज की रेसिपी?
3: करेले की सब्जी की।
7: करेले की सब्जी की?
3: मेरे घर पे कोई नहीं है मैं अकेले बैठा हूँ मेरे को करेले की सब्जी खानी है। खाना खाने का काम है अभी तो। नहीं नहीं ऑर्डर मत करिए भैया जी आपका दिल तो बहुत बड़ा है।
7: मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतना करेंगे।
3: नहीं नहीं मेहनत करना मेरे को पसंद है। ठीक है मैंने करेले धो लिए। हाँ जानता हूँ करेले का सब्जी तैयार भी हो गया। भैया जी आप कहाँ से हो? क्या कर रहे हो? अच्छा तो आप स्टूडेंट हो कोटा में नीट या जेई के? ओके थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये मेरे भाई बहनों ने एक डेयर दिया था। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए।
24: डेयर कंप्लीट हुआ दोस्तों मेरा डेयर कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा लगा मेरे को इनसे बात करके। अब अगला कौन है जो मेरे को डेयर देना चाहेगा?
23: मैं।
24: तो मेरी धीरे धीरे करके हिम्मत खुलती जा रही है। हाँ क्या डेयर है तेरा? दे डेयर
23: बताऊंगी
24: अभी। अभी बताना तो अभी और
3: कब बताए कल।
23: आप एक रैंडम लड़की को कॉम्प्लीमेंट दोगे? ये रैंडम नहीं, ये रैंडम नहीं, वो कुछ
24: अच्छा कॉम्प्लीमेंट तारीफ करनी उसकी। यार सारे डेयर लड़कियों में क्यों दे रहे हैं आप मेरे को?
23: हम लड़की हैं ना। वो शॉपिंग करेगी कुछ भी ले, चप्पल ले या कुछ भी ले, ठीक है आपको उससे कहना है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है ले लो। मैं कह रहा हूँ ना ये बहुत अच्छा लग रहा है ले लो।
24: हिम्मत खुल गई थी दोस्तों अभी तो। हिम्मत खुल गई थी अभी तो। ये क्या हो रहा है?
3: अभी हम जा रहे हैं दोस्तों जूडियो के अंदर। अगर कोई भी लड़की का कुछ ले रही होगी तो इन्हें कहना है हाँ ले लो बढ़िया लग रहा है। देखते हैं भैया क्या कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
0: अभी दोस्तों डेयर मेरे पास खुद चल के आएगा, बस मुझे 5 मिनट का वेट करना है। डेयर मेरे पास डेयर चल के आएगा।
23: ये
5: हाँ ये मैं ही हूँ, ये अच्छा लग रहा है, आप ले लो इसको। हेलो
6: भाई, मैं कार में से देख के पहचान गया आपको।
5: अच्छा ये अच्छा लग रहा है, आप इसको ले लीजिए।
8: आप गिफ्ट कर रहे हैं?
5: हाँ मैं गिफ्ट कर रहा हूँ।
6: ना यार, फर्स्ट टाइम तो मिले।
5: एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि ये आप पे अच्छा लगेगा, आप इसको ले लीजिए।
8: श्योर?
5: हाँ श्योर। एंड आई एम सॉरी, ये एक मेरे को डेयर मिला था, इन्होंने डेयर दिया था, मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं कोई नहीं, आप इसको ले सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो।
8: आप दिला रहे हो?
5: हाँ मैं दिला रहा हूँ, मैं दिला रहा हूँ, बताओ।
6: हाँ यार, फर्स्ट टाइम मैं
5: गिफ्ट। अरे मैं गिफ्ट कर रहा हूँ आपको, ऐसा ऐसा ऐसा
6: मौका मिल रहा है आपको।
5: हाँ
8: गर्मी,
5: तो दोस्तों आज मैं इनकी पसंद के इनको कपड़े दिलाऊंगा। कौन सी क्लास में आप?
6: क्लास नहीं है,
5: आपका कॉलेज कम्प्लीट हो गया, मुझे लगा 12th क्लास में। मेरे को कॉलेज खत्म होने वाले लग रहे हो।
6: आप दो बच्चों के पापा ऐसा मैं कहने वाला था, पर
5: आज हूँ दोस्तों मैं बुरा हुआ सस्ता मिस्टर बीस्ट।
6: पर कैसे हो?
5: बहुत अच्छा हूँ।
6: आप तो नहीं आते होंगे, पर आप
8: जानते हैं। आप सच में ही मुझे गिफ्ट करने वाले
5: हो? हाँ ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, ये मैं भाई को गिफ्ट कर रहा हूँ। ये भाई को पसीना आ गया गिफ्ट। थैंक यू सो मच मेरा डेयर कम्प्लीट कराने के लिए।
8: अच्छा जो
5: गिफ्ट
8: आपने दिया है ना,
5: ये रक्षाबंधन गिफ्ट है आपके लिए।
8: थैंक यू सो मच।
5: दोस्तों आज मेरी किस्मत मेरे चेहरे की तरह चमक रही है पिंपल को छोड़कर, क्योंकि मेरे पास डेयर खुद ब खुद चल कर आ रहे हैं।
8: बेटा मेरा डेयर चल के नहीं आएगा खुद।
5: कोई दिक्कत नहीं, हम डेयर को किडनैप कर लाएंगे तेरे को।
8: किडनैप? तुम्हारी तुम मतलब ये कहोगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा ये डेयर, और फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा ये डेयर।
5: मेरी किस्मत तब भी काम कर जाएगी।
6: देखते हैं, अपनी बात से मत पलटना।
5: मैं नहीं पलटूंगा भाई।
8: तुम हाथ पकड़ के राखी के पास जाओगे? अरे राखी नहीं, तुम मेरे पैरों में ना गिर जाओ तो मेरा नाम भी राखी नहीं।
5: ऐसा क्या डेयर है, शादी करवाएगी मेरी
8: ना?
5: हाँ तो अब मेरे को ये बताओ कौन है वो दिलदार जो मैदान में आएगा मेरे को डेयर देने? तू मेरे को डेयर देगा? तू मेरे को डेयर देगा? दे
9: भैया, आपको रैंडम पर्सन से ये बोलना है, ये काम इल्लीगल है।
5: अच्छा क्या काम इल्लीगल है?
9: कुछ भी कर रहा हो, वो चल रहा हो, पैदल चल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो,
5: बस मेरे को सही बोलना की ये काम इल्लीगल है, बस बस।
8: और आगे कुछ नहीं है
9: बोलना,
6: इसका डेयर ये है कि मतलब जैसे भी कोई रैंडम बंदा जा रहा है चल के, तो आपको उससे बोलना है अंकल ये बहुत इल्लीगल है, या आंटी भी हो सकती हैं, ये बहुत इल्लीगल है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये करके खुले में नहीं घूम सकते।
5: अच्छा
6: ठीक है, तो वो बोलेगा भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने, आपने ये कर दिया क्या, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो।
5: हाँ ये तो बहुत सिंपल है डेयर, इसको तो मैं यूं ही कर दूंगा। दोस्तों ठीक ठाक बंदे को भूख लगी है और ये सब्वे वाले के पास ले आया, कह रहा है कि सब्वे वाले भैया से कह रहे कि भैया ऐसे जो ये जो आप कर रहे हो बहुत ही इल्लीगल काम है। चलो मैं नहीं घबरा रहा, डोंट वरी, थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। मैं पहले ये कह रहा हूँ कि ये जो आप कर रहे हो ना इल्लीगल है, हैं? आपको पता है कितना बड़ा इल्लीगल काम कर रहे हो आप इतने बढ़िया देख रहे हो, ऐसे बढ़िया नहीं दिखना होगा ज़्यादा। मजाक था भैया, मजाक था, एक डेयर था जो कि इन्होंने मेरे को दिया था, ऐसे घबराना नहीं होता। अब मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, भाई अपना अपना ऑर्डर दे दो जिसको जो देना है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा ये डेयर भी हुआ कंप्लीट, जो कि बहुत ही इजी था। अब सभी लोग सब्वे खाते हैं क्योंकि भूख लगी। पता नहीं क्या डेयर है इसके पास, मुझे दोस्तों तभी से किंक किंक करने लगे हैं।
8: ऐसा डेयर है कि तुम्हें नहीं पता पर मेरे अंदर एकदम वो हो
5: रही है, मुझे भी ऐसे एकदम खुजली सी हो रही है। चलो बताओ क्या डेयर है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आंख बंद कर लेना।
6: करना पड़ेगा,
8: मुझे माइक दो, माइक में बोलूंगी।
6: करना पड़ेगा।
5: पता नहीं क्या डेयर है इसके पास, मुझे दोस्तों तभी से किंक किंक करने लगे हैं।
8: ऐसा डेयर है कि तुम्हें नहीं पता पर मेरे अंदर एकदम वो हो रही है,
5: मुझे भी ऐसे एकदम खुशी।
9: दोस्तों ये चालू हो चुकी
8: है,
9: कर दू कर दू भैया।
5: नहीं यार बात,
9: अरे उसको उठाना, उसका डर लगा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा।
8: सोचो अमित भैया में इतनी ताकत है, अगर वो जिम में जिम चले जाते तो कितनी ताकत होती। मैं तो एंटरटेनर हूँ
9: यार, मेरा हाथ छोटा है,
8: मैं तो दोनों की तरफ हूँ। अश्वांश भैया की सांस घुट गई। अश्वांश भैया को क्या हो गया?
9: एक आदमी में पांच लोग लगे।
8: हाँ
11: वन वी वन में आओ, वन वी वन में।
12: ए सी का रिमोट तोड़ दिया, तुम गवारो ना, हटो, हमारी ए सी का रिमोट मत तोड़ो। ओ भैया मेरा फोन नहीं टूट जाए, अपने फोन को जेब में रख लेती हूँ, देखते हैं कौन जीतेगा।
11: मैं तुम सबको छोड़ के चला जाऊंगा
12: भैया, मेरा बर्थडे मनाना है मुझे।
11: देख दे
9: पकड़ ले यार,
11: देख दे जल्दी जल्दी।
12: दोस्तों मुझे मेरा हैप्पी बर्थडे मनाना है, इसलिए मैं घर नहीं दूंगी, इसको नहीं दूंगी। ये तो दोस्तों रियल हो गया, हम तो हाँ ये डेयर तो एकदम रियल हो गया भाई, रियल हो गया, बच गए।
13: ये गलत है भाई, डेयर डेयर होता है।
12: भैया मैं तो तुम्हारी टीम में हूँ, देखो मैं तो भाग गई थी, याद मिलाओ।
13: नहीं
12: ये डेयर तो मेरा था, मैं डेयर चेंज करती हूँ, मैं भी आ रही हूँ।
11: एक निहत्ते को ऐसे घेर लिया बियर्ड हटाने के लिए, शर्म आनी चाहिए भाई। तुम सोचो बियर्ड हटा रहे हो, वैसे भी थोड़ी सी है। हैं
12: भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, देखो मैं तो तुम्हारे साथ थी।
11: भैया मैंने भी लास्ट में हार मानी,
13: मर्द के नाम पे धप्पा
11: भाई। क्या मर्द के नाम पे धप्पा? बियर तो मैं नहीं हटाऊंगा, वैसे भी थोड़ी सी है, मैं नहीं हटाऊंगा दोस्तों। मैं यही तो थोड़ी सी सान और कुछ है नहीं मेरे पास, शक्ल भी ऐसी बहंगी सी है।
12: भैया सर को मुझे बैठने दो, देखो मैंने तुमको बचाया है ना,
11: सब ठीक है। अब मेरे को ये बता, मैं ये वाला डेयर नहीं करूंगा, कुछ और डेयर देना है तो दो।
12: ठीक है ठीक है भैया, ये मेरा डेयर था ना, मैं अपना डेयर चेंज करती हूँ, मेरा अब ये नया डेयर है, सभी को ट्रिप पे ले
11: आना। मैं तो डर गया, मैं तो कह रहा हूँ ले जाता रहूँ ट्रिप पे, फोन क्या दिखाता बार बार,
12: तुम्हें याद दिलाते
11: हैं ना। तो दोस्तों ठीक है, मैं इन सभी को ट्रिप पे ले जाऊंगा किसी और वीडियो में,
12: जल्दी वाली वीडियो में।
11: हाँ अब किसके डियर बचे हैं?
13: हमारे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा के।
11: यार मम्मी पापा के डेयर तो बहुत खतरनाक होता
12: है, वो तो सीधे लेंगे, सारी गले बेटा।
11: क्या मुझे मम्मी पापा से डेयर लेने चाहिए?
12: और क्या
13: बिल्कुल लेने चाहिए भाई, मम्मी पापा के डेयर तो लेनी है।
21: तो चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ मम्मी पापा के पास उनसे डेयर लेने, और सबसे कठिन डेयर दोस्तों मेरे को यही लग रहा है जो कि यस डेयर। एक सेकंड के लिए फोन बंद कर लो। तो बात कुछ ऐसी है कि ये सारे लोगों ने मिलकर मुझे एक एक डेयर दिया है जो कि मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा। अब आप दोनों की बारी है, तो सबसे पहले आप मेरे को क्या डेयर देना चाहोगे?
14: तेरे को हम डेयर देंगे जो सबसे बड़ा शेयर करेंगे सभी लोग मेरे साथ,
21: शेयर करेंगे
14: मेरे डेयर को शेयर करेंगे, इसी शादी करवा।
21: ये वाला डेयर आउट ऑफ सिलेबस है, इस वाले डेयर को छोड़ के कोई और डेयर बताओ।
14: तो और क्या डेयर हमारे पास, और कोई डेयर है ही नहीं।
21: आपके पास क्या डेयर है मम्मी?
15: मेरे पास कहाँ है, क्या बात?
21: आप मेरे से क्या काम करवाना चाहते हो?
15: पूछेंगे।
21: ये वाले डेयर छोड़ के
15: तो और क्या चाहिए?
21: वो तो ये तो आपके 3-4 साल बाद पूरे होंगे,
14: तो फिर हमारे को ट्रिप करा दीजिए।
21: ठीक है दोस्तों आपकी ये ट्रिप होगी, थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को प्लान करने में,
14: कोई बात नहीं प्लान करके बढ़िया सी।
21: ये वाले डेयर छोड़ के
15: तो और क्या चाहिए?
21: वो तो ये तो आपके 3-4 साल बाद पूरे होंगे,
14: तो फिर हमारे को ट्रिप करा दीजिए।
21: ठीक है दोस्तों
14: देंगे जो वो सबसे बड़ा शेयर करेंगे सभी लोग मेरे साथ,
21: शेयर करेंगे
14: मेरे डेयर को शेयर करेंगे, इसी शादी करवा।
21: ये वाला डेयर आउट ऑफ सिलेबस है, इस वाले डेयर को छोड़ के कोई और डेयर बताओ।
14: तो और क्या डेयर हमारे पास, और कोई डेयर है ही नहीं।
21: आपके पास क्या डेयर है मम्मी?
15: मेरे पास कहाँ है, क्या बात?
21: आप मेरे से क्या काम करवाना चाहते हो?
15: पूछेंगे।
21: ये वाले डेयर छोड़ के
15: तो और क्या चाहिए?
21: वो तो ये तो आपके 3-4 साल बाद पूरे होंगे,
14: तो फिर हमारे को ट्रिप करा दीजिए।
21: ठीक है दोस्तों आपकी ये ट्रिप होगी, थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को प्लान करने में,
14: कोई बात नहीं प्लान करके बढ़िया सी प्लान कर ले अच्छी तरह जब तेरे को टाइम मिले।
21: ठीक है तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए।
4: दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाले लोग हैं, ये तो हंस भी नहीं रहे हैं। दिन भर दांत फाड़ने वाले लोग हंस ही नहीं रहे हैं आज। हंस जा भाई, हंस जा। पायल तेरा मुंह कैसा लगता है? पायल, हम तेरा मुंह कैसा बताते हैं? हाथ नहीं रखेगी। तेरा मुंह कैसा लगता है? राखी जब अपने हाथों के ऊपर हाथ रखती है कैसी लगती है? राखी, पायल गाड़ी में क्या करती है? पायल राखी, दोस्तों भाई साहब, राखी तो एकदम खतरनाक वाली है। ये तो बिल्कुल हंस भी नहीं रही है। आइया,
10: ये अपने मुंह में थूक भर के बैठी है।
4: आए, मैं पायल की बताता हूँ, फिर इसको हंसी आ जाएगी। असियो नाम का, असियो लाली मौसी दोस्तों।
10: क्या मैं बताऊं? रुक जाओ,
4: ऐसा नहीं।
16: साकेत मौसी का बिजनेस
4: दोस्तों। इसकी मौसी ना दिल्ली पुलिस में
16: बलेरा।
4: यहाँ पर सबसे लास्ट में जीती तो यही है भाई। जीती तो यही। दोस्तों मैं तो ऐसे ही मार लूंगा, ऐसे ऐसे लेके जाऊंगा। मैडक बनते हाँ, ऐसे बनते मैडक। जल्दी चल, चल भाग के दिखाओ। भागने की नाकाम कोशिश मत करना, भागने की कोशिश करोगे तो मार पड़ेगी। नाम का
10: आए, चलना नहीं है।
4: आ जा जल्दी, आ जाओ। ओए अगर रुकेंगे तो मार पड़ेगी, रुकेंगे तो मार पड़ेगी। ओए ऐसे ही है। अरे रुक गई है, रुक गई, रुक गई। रुकने की नहीं है, रुकने की नहीं है, रुकने की नहीं है। चल चल चल, रुक गई, रुक गई।
18: रुकने की, मानने की मना कर दी, ठीक है?
4: अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने सुन नहीं पाया था।
18: और क्या?
4: कोई दिक्कत नहीं, चल मैडकवन चल। चल और रुकी जा, चल चल
18: बस गाड़ी हो जा। पूरी मैयो पे ओ भैया
4: जी, मैंने ओए मैंने पायल थप्पड़ दिए। बट बट
10: ये उठा आता यहां से, आता उठा।
18: पायल रहने लग गई तेरे
10: जी भाई। एक आदमी कैसे अपनी छोटी है ना, जुल्म कर रहा है
4: जी।
10: शर्म नहीं आ रही?
4: जुल्म नहीं कर रहा मैं, इसको संभाल रहा हूं भाई। क्या हो गया पायल?
10: मैं पायल देश की पायल
4: पोपड़ी
10: तोड़ देते
4: तेरे साथ ही तो बेकार है, बचा भी नहीं रही, बचा भी नहीं रही दोस्तों। पायल को बचा भी नहीं रही है ये।
10: ये चप्पल किसकी है?
4: मजा आ गया भाई साहब।
18: दोस्तों
4: ये देखो, दोस्तों
1: गई खेत में।
21: अरे यहाँ पे भैया को पकड़ लिया गया भैया। रुका रुका रुका भैया।
17: ए लग गई उसका ही।
19: क्या हो गया? कैसे हो सोनिया? क्या हो गया पायल?
1: तीतर की तीतर उड़ाए देखो मेरा पायल नहीं है। अभी तो यागी दूसरे चप्पलों को पहन के आ रही हूँ मैं।
17: मैं तो भाई साहब अपने पैर पे
19: ऐसे पुनिया की है वो पुनिया की।
1: मैं अभी तो यागी वो वाले जूते लेके आ रही राखी ने गिफ्ट करे थे वो आ ले के आ
19: जा। तू गिफ्ट करे थे तू अपने गिफ्ट की इज्जत नहीं है।
17: हां भाई मैं तो अपने गिफ्ट को फेंकने भी नहीं देता। मैं तो अपने गिफ्ट को फेंकने भी नहीं देता। चल ले गेटी लगा लिया हमने। दोस्तों मेरी चप्पल तो ईंट ली है पास में। मेरी चप्पल तो दोस्तों मुझे मिल चुकी है बहुत आसानी से बहुत पास थी। इनकी चप्पल तो पूरे खेत में है।
1: पहले फेंकी थी।
17: अभी हम जा रहे हैं दोस्तों चप्पलों को ढूंढने के लिए। ये तो पायल के गले की माला है। एक चप्पल दोस्तों यहीं कहीं है और यहाँ पे दोस्तों सांप रहता है। मुझे तो सांप से वाटर लगता है।
1: एक ये रही और मेरी एक हो रही। बाम मत फेंकिए सांप से बाम मत फेंकिए बेटा सांप रहता है।
17: एक ये रही चप्पल दोस्तों ऐ छोड़ता है। एक ये रही चप्पल
1: क्या? दोनों मेरी चप्पल है। ये एक पायल पहनी थी एक मैं पहनी थी दोनों इससे पायल कर रही
17: थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलेगा मिलूंगा आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। निशाना बेटा चूकेगा नहीं हमारा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को क्या हो गया पायल डाउन टू अर्थ है। धरती माता को इसको बहुत प्यार आ रहा था दोस्तों। तो धरती माता ने इसको गले लगा लिया अभी। दोस्तों इसके दिमाग में बहुत गहरी चोट आई है। अब तो CTR कराना पड़ेगा उठ जल्दी। मजा आ गया होगा पायल है ना? कैसा लगा धरती माता से गले लग के? चलो दोस्तों इसी के साथ बिना किसी की हड्डी टूटे हुए मैं इस वीडियो को एक और बार कह रहा हूँ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल इसके गोलगप्पों के साथ। तब तक के लिए आप चले जाओ।
1: थैंक यू सो मच।
17: सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना मेरे चैनल को सबके।